नारायणम्। ओम नमः श्री प्रभुदीप श्रीदीप नारायण भगवान की देवादिदेव देवपुरी समादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की अलकपुरी जी महादेव की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति। भजन।

0: जय श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय, श्री शलपुर जी महाराज की जय, हिंदू धाम समरथ सतगुरु स्वामी माधवरण जी भगवान की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय।
1: जय
2: वेरी गुड, थैंक यू, हरिओम एवरीबॉडी। Today is finished.

श्री दीपनारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। श्री सत गुरुदेवा की जय।

0: बोले श्री भगवान देव पुरुष महादेव की जय, श्रीमान गिला जी महाराज की जय। दीप नारायण भगवान की जय, अलख पुरुष भगवान की जय, धर्म सम्राट समोदवानंद जी भगवान की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: भले सिद्धि भगवान देव पुरुष महादेव की जय। श्री श्री दीप नारायण भगवान की जय। सियालकपुरी जी सीधा पिता परंपरा की जय।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय।

अम्बले श्री दीप नारायण भगवान की जय, गुरुदेव की जय, श्री ब्रह्मानंद जी की जय।

ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमुहूर्त पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मौक्षमूलम्।

तत्सवित सैन्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरे

ओम श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन दार

ईश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत ब्राह्मण के रचयिता, सृष्टि के पालनकर्ता, घटघट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। आराध्य श्री गुरुदेव के शुभ चरण कमलों में कौटि कौटि साष्टांग दंडवत। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है कि हम यहां इस आश्रम के अंदर सत्संग में आए। ये हमारे पूर्व जन्म का अच्छा कार्य, अच्छा कर्म यहां लेके आया है। ब्लेसेड सेल्फ, ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, द ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम होली भारत, ब्यूटीफुल कलरफुल राजस्थान, पिंक सिटी, जयपुर के जोधपुर, जयपुर। वेलकम। टुडे सब्जेक्ट इज द नाद योग। वेदा से नाद रूप पर ब्रह्म, वेदों में कहा गया है कि नाद रूप पर ब्रह्म, अगर परब्रह्म परमात्मा को देखना है कि वो कैसे हैं, तो उनका और कोई स्वरूप नहीं है, केवल नाद। द वाइब्रेशन, द रेजोनेंस, अनंत ब्रह्मांड, सहस्त्र सूर्य, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सन सिस्टम्स, एंडलेस स्टार्स एंड मून्स, ऑल इज क्रिएटेड आउट ऑफ द वन, द साउंड। शून्य काश, पूरे ब्रह्मांड की रचना, जिसके अंदर हजारों लाखों लाखों सूर्य मंडल हमारे ऋषि मुनियों ने कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले अपने ज्ञान शास्त्रों के अंदर लिखा है, बताया है। यहां तक कि एक योगी की चेतना 14 लोक 2100 ब्रह्मांड, ये जो 7 लोक बताए गए हैं, इनके परे 2100 सूर्य मंडल है, वहां तक योगी की चेतना पहुंच सकती है। उसके आगे जाने के बाद में वो स्वयं जो है वो फिर वापस नहीं आएगा। 14 लोक 2100 ब्रह्मांड, द 14 different worlds and 2100 sun systems above that, the consciousness of the yogi can expand, and till that the awareness of in that consciousness can reach and come back and give the knowledge to us. Modern science try to come to the moon, try to go to the Jupiter or the Mars, which is within our sun system. But how the yogis went there, that is the evidence of the Hindustan's Bharat ki Sanskriti aur Bharatiya Yogi Muni Rishi Muniyo ki Shakti aur Gyan.
और वो जो कहा गया है कि एविडेंस विल नेवर डाई, कोशिश करते हैं लोग हमारा धन चुराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उनके पेट में पचता नहीं है। ऑल दिस दैट टाइम कॉल्ड द शून्याकाश, ए वॉइड डार्क ब्लू स्पेस, नथिंग इज इनसाइड, नथिंग। देयर अगेन शास्त्र सेड, वेदा सेड, एकोहम बहुश्यामी, आई एम वन एंड नाउ आई विल मल्टीप्लाई माई सेल्फ। क्या भगवान की इच्छा होती है? क्या भगवान इच्छा करता है कि मैं एक हूं, अनेक में बनूंगा? वो कौन है कहने वाला? देखा किसी ने? सुना किसी ने? लेकिन ऋषि मुनियों का कहना है, वो जो है जिसको हम कहते हैं कि भगवान ने कहा या जिसने कहा कि मैं एक अनेक में बनूंगा, वो एक जो है वो एकाकार, निराकार, निरंजन, नित्य, चिदानंद रूप स्वरूप, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना, अनंत की चेतना, हरि।

अनंत अनंत हरि कथा। दैट टाइम इन एंडलेस देयर अवेक इज पूर्णा, ए वाइब्रेशन, ए रेजोनेंस, दैट्स कॉल्ड द साउंड, एंड दैट साउंड वी कॉल ओम, अकार उकार मकार। Through that resonance, whatever is visible in this universe, whatever is invisible but you can feel, in that all is created by that one bindu, one akar. Nad bindu kala. Nad bindu, us bindu se shuruaat hoti hai. Vah bindu abhi tak hai. जिस समय आप मां के गर्भ में प्रवेश करते हो उसमें सबसे पहला एक बिंदु केंद्र बनता है, वो हमारी नाभि है, और उसी के पास में आंत बनने लगती है, फिर रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर दूसरे अवयव और अंग शरीर के जो है बनते हैं। लेकिन बिंदु तो वो है नाभ, और वो जो है मां का गर्भ जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। मां की कोख जो है वो संपूर्ण आकाश तत्व है, और वो जीवात्मा जो है वो चैतन्य, उस परमात्मा का स्वरूप चैतन्य। तो जब कहा जाता है कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, वो कमल ये है कि विष्णु जल के अंदर रहता है, और वो जल के अंदर वही चेतना जो कि मां की शक्ति है वो रक्षा करना। भगवान विष्णु हम करते हैं, क्या करते हैं, रक्षा। ब्रह्मा इज द क्रिएटर एंड विष्णु इज द प्रोटेक्टर एंड शिवा इज द लिबरेटर, नॉट ए डिस्ट्रैक्टर, बट ही डिस्ट्रॉयज द नेगेटिव। शिवा इज नॉट ए डिस्ट्रैक्टर। तो वह जो मां के शरीर के अंदर जो गर्भ बढ़ता है वही कमल है, और वही कमल जो है जब जन्म होता है बच्चे का, अभी भी उसी बिंदु से जुड़ा हुआ है, उस अनंत मां अंदर अनंत है। उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले भगवान मां है, मातृ देवो भवः, वही कमल है, वही कमल बढ़ता है, और वही उसकी कई अलग से हमारे योग के अंदर वही ईडा पिंगला सुषुम्ना है, वही नाड़ी है, वही कमल खुलता है, ब्रह्मा वही ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म जाने ते ब्राह्मणा। उसी नाद का स्वरूप जो है वो नाद, वो रेजोनेंस, दैट साउंड इज स्टिल रेजोनेटिंग कॉन्स्टेंटली बियॉन्ड मैनी सन सिस्टम्स एंड इन अवर ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। देयरफॉर वेदा सेड यथा ब्राह्मणे तथा पिंडे, जो ब्राह्मण के अंदर है वो हमारे शरीर के अंदर है, और जो हमारे शरीर में नहीं है वो बाहर नहीं है। हर एक सेल्स हमारे बॉडी के जो है, हर एक अवयव हमारे शरीर के हैं, उसके अंदर में नाद है। वो सोनोग्राफी करते हैं ना साउंड के साथ में, हृदय की आवाज सुनाई देती है। एक मिनट में कितना लीटर हृदय खून फेंकता है, या डॉक्टर साहब बैठे कार्डियोलॉजिस्ट, उसने रॉन्ग मत बोलना, एक मिनट में 5 लीटर खून का दौड़ा करता कराता है हमारा ये हार्ट। ओ तो 24 घंटे में कितना होगा भाई, पड़ियोड़ा मैं बताओ, मैं तो पड़ियोड़ी को नहीं हूं। उस हार्ट का आपने कभी ध्यान रखा, कभी आपने हार्ट को कहा कि आप कैसे हो, आपको कैसा खाना चाहिए, मैं क्या खाऊं जिससे आप मजबूत और खुश रहो? हम हमारी जीवा के मुंह के स्वाद के कारण
हमारे कोई शरीर की अवयवों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। कभी आपके हार्ट को कहा कि तुम एक दिन विश्राम कर लो? मामला पूरा। तो अरे उसको विश्राम के लिए नहीं तो उनकी थोड़ी सहायता तो कर लो। आपका सबसे अच्छा सेवक आपका जो है वो सेवक है हमारा हार्ट। चलो नाद, इसीलिए हमारे चार वेदों के अंदर एक और पांचवा वेद है जिसका क्या नाम है, गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद जो है नाद योग है, और उसके अंदर में जो है ये नाद हमारे शरीर में जो प्रकट के द्वारा और मानव योग साधना करके उसको पहचान सकता है तब भगवान का साक्षात्कार होता है, जब तक नहीं होता नहीं तो नहीं होता है। एक छोटा दृष्टांत, देयर इज वन स्मॉल स्टोरी। गॉड हैड ए ब्यूटीफुल गार्डन, वेरी ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा, और भगवान के वहां अच्छा निवास था, वहां भगवान रहते हैं। एवरी मॉर्निंग सुबह उठ करके भगवान अपने बगीचे में घूमने को जाते थे, एंड ही टचेज ईच एंड एवरी ब्लॉसम्स फ्लावर्स प्लांट्स ट्रीज, हाथ लगाते हैं, भगवान देखता है, भगवान चलते हैं, और जितने भी पौधे हैं, जितने पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, वृक्ष हैं, भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूं, हे प्रभु हे प्रभु। और भगवान भी कहता है कि यस माय डियर आई लव यू आई लव यू। भगवान भी हमारे से प्यार करते हैं। तो वहां एक बांस था, है भगवान के बगीचे में सभी हैं। सो देयर वॉज ए बंबू एंड बंबू वॉज इन सम कॉर्नर। तो बंबू भी दूर से कहता था बांस के, भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं। भगवान आते कि हाँ माय डियर बंबू आई लव यू आल्सो वेरी मच। भगवान उस बांस को भी टच करते थे। फिर भी हमारे कुछ महापुरुषों ने कहा है कि बांस उगा भूमि पर और दुखी हुई बनराय, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। जब कहीं बांस उगता है तो पूरी वनस्पति दुखी हो जाती है, क्योंकि बांस हवा से आपस में घिंचेगा और आग होगी सबको जला देगा। बांस के अंदर तीन अवगुण हैं। बांस चाहे अपने चंदन के पास हो, बांस चाहे गुलाब के फूलों के पास बीच में हो, वो सुगंध नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर अवगुण है। एक तो अवगुण वही है कि वो इतना कड़ा है कि उसके अंदर से कुछ पार नहीं होता है। वो कड़ापन यानी अपना अहंकार। ज्यों पद बढ़ता है तो मद भी बढ़ता है। ऐसे जो बड़ा हो गया हमारे समाज में, अगर कोई बड़ा अफसर बन गया और कोई हमारे समाज का कोई गरीब जाएगा कि साहब माने कोई नौकरी नहीं, बाद में फिर बात करेंगे, अरे भाई सहायता तो कर। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा इसके लिए, जो बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। अरे समाज में कोई इतना बड़ा हो गया और गरीबों की हमारे समाज की सेवा नहीं करता है, अरे तू कब तक रहेगा, चार दिन रही चांदनी आखिर अंधेरी रात। पद का मद तुम कहां तक लेके चलोगे। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सब दिन हो तन एक समान, लेकिन फिर वो तुरंत गुरु नानक साहब सेड कि एवरी डे इज ए गोल्डन डे,

सभी दिन स्वर्ण दिन है। किसके लिए? संत के लिए। संत कपड़ा पहनने से नहीं होता, रंग बनाने से नहीं होता है। संत की क्वालिटी हृदय के अंदर होती है, विचारों के अंदर होती है, दया के अंदर होती है। संत वो बैठा है और कोई आ गया तो कहेगा भाई रोटी खा के जाना, ऐसे मत जाना कि नहीं समय नहीं है, समय नहीं दीदा ये तो प्रसाद ले जा खाते जाना बेटा, वो संत होता है। लोग आ गए अभी क्या करें, चलो आ गए, कैसे आए भाई, कोई काम है कि नहीं, बस जाओ। वो संत नहीं होता है, खिलाओ। जितना खिलाओगे उतना तुम्हारा तप बढ़ेगा, तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी कर पर कर कर, अरे कि हाथ के ऊपर हाथ करो तुम देते जाओ। तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, नीचे कर मत करना। तुलसी कर पर कर कर, पर कर कर न कर, तहां दिन पर कर कर उस दिन मरण कर, है कि नहीं? मांगन मरण समान है, जो कोई मांगन जाए उनसे पहला वो मरा जिसके मुख से निकला ना आए। वो संत की पहचान होती है, चाहे ग्रस्त में भी हो तो भी देना होता है, दया होती है, और वो माताओं के अंदर जाता होती है। दो तीन आदमी एक साथ रह गए तो कोई आते तो देखते घर के अंदर कुछ जाने के, भूकंप हुआ अभी, पेंट कहीं पड़ा है, समझ वो मोजा कहीं पड़ा है, वो पड़ा है, आएगा पानी पियोगे सा, अच्छा पानी लाता हूं, दूसरा क्या कहीं, और जहां बहने हैं माताएं हैं घर की शुद्धता है, कोई भी मेहमान आता है जल पिलाएंगे कुछ ताके, बिना कहे ही पूछते नहीं पानी पियोगे, तो कहीं दारू पाए तो भाई सही बात है कि नहीं? नारायण नारायण नारायण। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। उसका कड़कापणा जो है वो उसका स्वाद नहीं ले सकता है। दूसरा, मान लो किसी रूप से अगर सुगंध अंदर चली भी जाए तो अंदर में है पोल, पोल है कि नहीं? अब वो पोल में कहां रुकेगी वो सुगंध, वो तो अच्छा वो पोल है तो वो सुगंध आगे जाना चाहती है लेकिन उसके अंदर कपट की गांठ है, गांठ है क्या नहीं? बांस में कपट की गांठ, बीच में है पोल, और अगर उसको कह दो तेरे अंदर तो पोल है, थोता चढ़ाने बाजे घना, भरा तो जबके नहीं जबके सोई आधा, घोड़ा तो भूके नहीं भूके सोई गधा, अगर इतना कह दिया तो उसको क्या होता है? गुस्सा आता है। तो जब वो बांस अपनी जवानी पे आ जाता है तो हवा आती है तो रगड़ता है, घिसता है तो उसमें आग लग जाती है, सब वनस्पति को जला देगा। ऐसा हमारे समाज में, हमारे समाज के अंदर पैदा होए तो क्या करेंगे उसे? बांस उगा भूमि पर दुखी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा सबको देगा जलाए। और आप जैसे धर्मात्मा, आप जैसे संत आत्माएं, आप जैसे जिनके माता पिता की पूर्ण आशीर्वाद है, गुरुदेव की पूर्ण आशीर्वाद है, आप अभी यहां बैठे हो वो आपके पूर्वजों की कमाई है, अभी खा रहे हैं वो पूर्वजों की कमाई है, अब तुम तुम्हारे बच्चों को क्या दोगे वो फिर तुम्हारी कमाई है। तो कहा कि चंदन उगा भूमि पर और खुशी हुई वनराय, एक दिन ऐसा आएगा कीमत देगा बढ़ाए। जहां चंदन उगने लगता है तो पूरे फॉरेस्ट उसकी रक्षा हो जाती है, यहां पेड़ नहीं काटना यहां चंदन उग रहा है। तो ऐसे हम चंदन चाहते हैं हमारी समाज के अंदर, माता जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, नहीं तो रहिए बांजरी मत गमाइए नूर। क्योंकि तीन सजावट देश को, हमारे इस भारतवर्ष की शोभा हमारी माताओं के द्वारा जो संतान पैदा होती है उसकी है। तीन सजावट देश को शक्ति संत और शूर, और तीन लजावट देश को कपटी कायर और
करो।

0: बात चल गई थी आज कहीं कि हमारे यहां के डॉक्टर अमेरिका जाते तो उनको फिर स्टडी करने लेनी पड़ती है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि अमेरिका हमारे यहां के डॉक्टरों को कितने पैसे देकर के, फर्स्ट क्लास का टिकट देकर के 5 दिन के लिए भी बुलाते हैं। कितने डॉक्टर्स जाते हैं हमारे मुंबई से, अहमदाबाद से, राजस्थान से, वहां की यूनिवर्सिटीज और वहां के डॉक्टर्स उनको बुलाते हैं, क्योंकि भारत ज्ञान है, भारत ज्योति है, भारत विश्व का गुरु है, हर एक फील्ड में, आध्यात्मिकता ही नहीं, हर एक जगह में। आविष्कार भारत में जो किया हुआ है, साहित्य कहीं होगा, अब जो है ये टेक्नोलॉजी जो है, लेकिन देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में भी ब्रेन जो है हमारे भारतीयों का, ऐसा ब्रेन कम ही बार मिलेगा। आज से 15 साल पहले जर्मनी ने वीजा फ्री कर दिया था और हमारे अच्छे से इंजीनियरों को वहां काम दे रहे कि आप आइए और हमारे लोगों को सिखाइए। यू नो दैट, आपको पता नहीं होगा। तो भगवान अपने बगीचे के अंदर जा रहे हैं और सभी पेड़ पौधों को हाथ लगाते हैं कि कैसे हो बच्चा, कैसे हो बेटी, कैसे ठीक हो। बांस कहता है कि भगवान मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए और ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे भी आपके बगीचे में रहने की जगह दीजिए। भगवान कहते हैं कि ये बांस, तू मेरा बड़ा प्यारा है, तू मेरे बगीचे में हमेशा हमेशा रहेगा, मैं सबसे ज्यादा तेरे से प्यार करता हूं, बोल। फिर भी कपटी के मन में तो कपट रहता ही है, डाउट कभी आउट नहीं होती है। एक दिन आया, भगवान सुबह उठ करके दोनों हाथ कमर के पीछे, बांस का कलेजा जो हार्ट बीट जो है वो 165 पे पहुंच गई। बांस कहता कि भगवान आज आपके हाथ, आपके हस्त कमल हमेशा आशीर्वाद के रूप में आता है, आज पीछे कमर पे क्यों रखे, पीठ पे चल के क्यों रखे हो। भगवान कहते हैं कि बांस, आज मैं तेरे को कुछ दर्द पहुंचाऊंगा। बांस रोने लगा, मैंने क्या गलती की प्रभु, मैंने क्या गलती की, क्यों क्या करोगे प्रभु, यहां से निकाल दोगे? कि नहीं नहीं, मेरे बगीचे में तेरा हमेशा हमेशा के लिए तेरी जगह है, लेकिन आज मैं तेरी भुजा काट दूंगा। मेरी भुजा? भगवान आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन इतना तो मुझे बता दी कि आप मेरी भुजा क्यों काट रहे हो। भगवान कहते कि हे बांस, मुझे तेरी आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता आपको? हां बेटा, जो कार्य मैं नहीं कर पाता हूं वो कार्य तुम कर पा सकते। वो कौन सा है भगवान? कि बेटा, मानव जाति का हृदय पत्थर की तरह हो गया है और उसको मक्खन की तरह इतना मुलायम करना है, वो मैं कैसे करूंगा? भगवान आप ही कर सकते हैं। कि नहीं बांस, तुम ही कर सकते हो बेटा, तो मुझे और समझाइए मैं कैसे करूंगा। मेरा हाथ काट दीजिए, आप दोनों ही काट दो, आप मैं आपके अधीन हूं। कि बेटा, मैं तेरे इस भुजा का एक सुंदर बांसुरी बनाऊंगा और उसके अंदर मैं स्वयं मेरे प्राणों की आहुति दूंगा, लेकिन मेरे प्राणों की आहुति की जो ध्वनि निकलेगी वो ब्रह्मांड के अंदर जो कहा है नाद रूप पर ब्रह्म, वो प्रकट होगा और हर एक के हृदय के अंदर जो कठोरपन है वो मिट जाएगा और कोमल हृदय हो जाएगा। बोल सतगुरु देव की। तब से ये बांसुरी बनी भाई, ये भगवान की बांसुरी, ये भारत का असली वाद्य जो है हमारे संस्कृति का, इसीलिए भगवान के हाथ में बांसुरी रहती है, सरस्वती माँ के हाथ में ग्रंथ रहता है, ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहते हैं, काट दिया, बजरी बन गई। भगवान नित्य नियम से हमेशा उस बगीचे के में फिरते हैं। एक दिन फिर ऐसे हाथ रख के भगवान आ रहे थे। बास ने सोचा कि आज और कुछ न कुछ दाल में काला है, भगवान आज और क्यों हाथ आप अपनी पीठ पे रख के आ रहे हो कि बेटा आज मैं तेरे को बहुत भयंकर दर्द पहुंचाऊंगा, मैंने क्या पाप किया, मैं कुछ नहीं करता हूं, केवल आपके दरबार में आपके बगीचे में खड़ा हूं और आपके दर्शन की लालसा है। हां बेटा, लेकिन फिर भी मैं आज तेरा जो मूल जो है, गोड जो है, उसको काट दूंगा। तो भगवान कहते हैं ये तो अब आज कहता क्यों क्या करोगे कि तेरा जो गोड है वो काट दूंगा। अच्छा मुझे समझाइए काटने का कारण क्या है कि बेटा ऐसा है कि हिमालय की कंदराओं से जहां पानी बर्फ की चट्टाने पिघलती हैं वो पानी जो आता है वो वहीं कहीं नीचे चला जाता है और इधर उत्तर की तरफ पूर्व दक्षिण की तरफ जहां भारत है अकाल पड़ रहा है, पानी नहीं है, जानवरों को मानव को पीने के लिए पानी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उससे। हां बेटा ये तेरा इतना ज्यादा गोड है ना, उसको काट के मैं जहां पानी की धारा आती है वहां रखूंगा, तो एक चट्टान से दूसरी चट्टान के आगे रखूंगा तो पानी पूरा भारत की तरफ से आएगा, इसलिए तू ही है, दूसरा तो बिखर जाएगा। तो बांस को कितना ही पानी में रखो वो खराब नहीं होता है, तो वो प्राण रूपी जल हमें वापस पिलाता है। तो ये बांसुरी नाद योग, नाद रूप परब्रह्म, उस परब्रह्म का स्वरूप का लेकिन हर एक की बात नहीं है। ये बांसुरी क्या छोटा सा ये लकड़ी है, छोटा सा डंडा है, मने देओ तो मैं तो करूं मां टू टू के हां बाबा जी बहुत बढ़िया बनाए रेवा दबे गणो, लेकिन जब अच्छा कोई कलाकार उसको कृष्ण की तरह अपने होठों पे लगाता है तो बांसुरी भी खुश होती है, यहां अब भगवान मेरे से प्यार कर रहे हैं और भगवान का प्राण जो है मेरे अंदर प्राण संचार हो रहे हैं। हम सभी भगवान की बांसुरी हैं, हमारे अंदर जो प्राण संचार हो रहा है वो उसी परब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ प्राण हमारे अंदर है। जब तक भगवान हमारे को बनाए रखेंगे हम बना रहेंगे, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके मुख से बांसुरी हटा के ले जाए। नाद, नाद योग, 10 प्रकार की नाद होती है, 10 इंद्रियों से जुड़ी हुई होती है और 10 इंद्रियों के परे जब नाद खुलती है उसको सोहम कहते हैं, आई एम दैट एंड दैट आई एम। उसी नाद को सुनने के बाद योगी की चित्त वृत्ति का निरोध होता है और फिर वो ध्यान में जाता है, नहीं तो वो बुगला होता है, एक पैर पे खड़ा रहता है, ऐसी दृष्टि से देखता है कि जैसे मच्छी आई या मेंढक खा जाऊंगा। एक पैर पे वो खड़ा क्यों रहता है, एक पैर पे क्यों खड़ा है, दोनों पैर पे खड़ा रहना चाहिए बताओ। एक पैर पे वो इसलिए खड़ा रहता है कि मच्छी आ गई तो दूसरा पैर पानी से निकाल के चलेगा तो मच्छी चली जाएगी, इसलिए रेडी रहता है कि कदम लगा के खा जाऊंगा। जीवों के अंदर भी तो कला तो है ना, ये कलाएं जो भगवान ने प्रकृति के साथ जोड़ी हैं अपना जीवन जीने के लिए। तो आज हमारे इस सत्संग के अंदर बहुत अच्छे हमारे कविराज आए हैं, काई ना भूल गयो, ओहो इंद्र दान रत्न, बोलो इंद्र को भी दान देने वाला है, वो रत्नों में भी रतन, वो रत्नु आ गए हमारे पास। मेरे रत्नु बहुत चिले, हाँ तो रत्नु के अंदर रत्न होता है और तो कहाँ रहेगा, रत्नों की खान में रत्न निकलता है ना। सो आई वुड इंट्रोड्यूस यू टुडे, आई स्पोक अबाउट नाद योगा And the story many of you know often I used to tell about the bamboo and the creation of the flute, meaning of the sound and the artist. The artist is a master. Karat karat abhyas pyare jadmat hot sujan rasi ki avat javat silpar padat nishan. So practice makes perfect. Abhyasa abhyasa kaunteya abhyasa. हे अर्जुन हे कौंति के पुत्र सन ऑफ द कौंति प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बट प्रैक्टिसिंग यू कैन डू मैनी मैनी ईयर्स बट इफ इनसाइड यू डू नॉट हैव दया योर प्रैक्टिस विल नॉट बी सक्सेसफुल इसीलिए कहा है गुरुदेव बिना कार्य न सरे कोटि उपाय करे कोई चाहे न भव सिंधु तेरे गुरुदेव बिना कारज नहीं सरे तो वही बांसुरी वही नाद जो कि पता नहीं कितने अरबों खरबों वर्षों पहले युग युगांतरों पहले ये नाद ब्राह्मण से उत्पन्न हुई वो आज भी हमारे साथ में है उसको ही पहचानना भगवान को ही पहचानना है तो हमारे इंद्रदान जो है वो आपको ही विल Play for us a flute, and this flute is that one which was made originally by many, many yugas ago. Bol Sri Deep Narayan Bhagwan ki, Deveshwar Mahadev ki, Dharam Samrat Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki, Om Shanti Shanti.
1: Ek line
0: bolo. Bolo this line.
1: First of all, I wish
0: floor is yours. With the thoda utne mundo
1: kar da. All over the world.
0: Camera ki taraf.
1: I wish to thank a millions of times to Swamiji for, first of all, so profoundly analyzing the creation of the universe and linking it and bringing it ultimately to the flute. Which I wish to play before all of you. And I am very thankful to him for inviting me here to deliver this recital of the flute. Thank you, Swamiji.
0: Welcome.

0: कौन सी राग थी ये?
1: ये कोई सारंग राग,
0: क्या कोई गीत था?
1: सारंग राग थी और उस पे आधारित है गीत, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे श्री कृष्ण।
0: अच्छा, चारण राग है? चारण राग
1: नहीं, चारण नहीं था, सारंग।
0: अच्छा, सारण,
1: सारंग
0: समझ गया, आप चारण हो इसलिए।
1: नहीं नहीं, चारण कोई राग।
0: अच्छा,
1: सारंग राग।
0: एक और कोई राग बताओ। एक्सप्लेन द पीपल व्हाट यू आर सिंगिंग इन इंग्लिश सो दैट our international audience understands, because
1: it was based on Rag Sarang and it is based upon that I just played the flute about a bhajan about Lord Krishna, which says choti choti gaiya chote chote gwal, they are small cows and so are the cowherds gwale, छोटे से हमारे मदन गोपाल, सो लॉर्ड कृष्णा टू इज ए स्मॉल पर्सन। सिमिलरली सेज दैट घास काए गैया, द काउज ग्रेज ग्रास, घास काए गैया दूध पिए ग्वाल, एंड माखन खाए हमारो मदन गोपाल।
0: नेक्स्ट राग कौन सी है, क्या गाओगे बताओ?
1: अब बाप जी जो निकल जाए उसके बाद में बताऊंगा। नहीं, पहले बताना बड़ा कठिन है, मैं चाहूं वो राग निकल ही नहीं पाती।
0: कौन सी राग?
1: फिर भी ये भैरवी, भैरवी को टच करेगी, भैरवी। अब भजन कुछ नहीं है बहन जी, इतना मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, सही बात। ऐसे ही
0: चिराग, चलो
1: भैरवी को टच कर, कोई गीत नहीं ऐसे ही।
0: हाँ, भैरू जी को बुलाओ आप, काले भैरू को दौड़ो।
1: और उसमें फिर आखिर में भैरवी आधारित है गीत, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, उस पे आ जाऊंगा फाइनली।

0: हृदय से बिसराए और दुख पर सिला पड़े, नाम हृदय से नहीं बिसराए, दैट्स इट। सो दिस इज अ कमिंग लाइक दिस, सो दैट एंड दिस आर द फर्स्ट पेटल्स द फोर। नाउ दिस इज अ ट्राइंगल, व्हाट इज इन ट्राइंगल? इफ इट इज गोइंग अप then we are lifting up and it is gliding, and or this shakti or from here being going down, then it will pull it completely down.
1: Vortex down into the earth?
0: Yes, that's it.

सिद्धि सिद्धिविनायक भगवान की जय। श्री श्री विश्वगुरु दशरथ स्वामी महेश्वर जी गुरुदेव की जय। सामकुच देवी नाथम

देवतारायण भगवान की जय। श्री श्री विश्वकुंडेश्वर परम स्वामी महेश्वरंज गुरुदेव की जय।

शंभो। ओम शलपुर्जि महादेव की जय। देवादेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वर अनंतपुरजी गुरुदेव की जय। ओम।

हिंदु धर्म सम्राट परमहंस श्री माधवानंद पुरुष सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री महेश्वरानंद पुरुष गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत शुभ महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में

0: जय हो गौ हत्या बंद हो गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म की जय आप सब भक्तों की जय हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो
1: महामंडल शारदा स्वामी माता गुरुजी महाराज की जय।

ओम श्री प्राण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की सत्य सनातन दार

0: This is now a reservoir of life, not only for the ashram, but also for many villages in this thirsty region. Now was the right moment to reforest the hill with soils dug out from the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's guru, is both the rain cloud and the sun, an eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धोके अंतकरण की शुद्धि होती है। अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा। लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम। जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है। इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है। ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है। साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है। वो भव सागर से सहज तार लेते हैं।
0: The following day, there was the festival of the Dawn of Consciousness, the Light of Consciousness festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept this spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: So in our scriptures, in our teachings, in our way of life, there cannot be any other great person than Guru in the world for the disciple and for the all the followers of the yogic way of life.
1: Tamso ma jyotir gamaya. Lead us from the darkness to the light. The first, very first day when the first resonance was awoken in the endless universal consciousness, where the consciousness was dormant, the first was that resonance, the sound that was the Om, and through that sound, the second element, the second tattva, beside the akasha, the fire element was created. And that first very moment is that is was the beginning of the Guru Purnima.
2: गुरु का मतलब है गुमन अंधकार रूमन है प्रकाश अंधकार मेट के अपनी भूल है अज्ञान है वही अंधकार है उसको मेट के प्रकाश देने वाले सत्य ज्ञान देने वाले अज्ञान को हटाने वाले वही सतगुरु होते हैं गुरुदेव को पहचानने वाले बहुत थोड़े भक्त होते हैं गुरुदेव को पहचाने वो स्वयं गुरु रूप परमात्मा रूप हो जाते हैं और गुरुदेव की कृपा होती है आत्मा का ज्ञान हो जाता है लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है स्वयं भगवान ने मानव को पवित्र होने के लिए मानव को सुखी होने के लिए ये गुरु पूनम का पर्व बनाया है
3: Everybody wants to personally approach Holy Guruji and Swamiji, to see him and to be seen, to touch him and to be touched. This is a privilege of Guru Bhakta. Bhajans, the spiritual songs and odes to gurus, are sung all night on this night of an unforgettable full

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यही मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatan Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing.

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.